की फांसी। जिन निरभाव जिन हर निरभाव त्याया जी, तिनका पहो सब गवासी। जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

पई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन बृष्ट गगन ते पई सब हिन्यान बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल पमन के सृजन हारे दाह जान मुहले हो बारे कब्यो बात बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दया रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा

हे बचाव हो। सुखी बसा मोर परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोह रक्षा निज कर दया करिया, सब बैरन कौ आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याहूं, जो अवर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दया मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री हस्तु जो करिय हो रच्छा, राख ले हो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दया जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तसही को हमारी, सगल प्रजा जिने आप सुवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बाधे कियो, घट घट के अंतर की जानता, भले बुरे की पीर पछानता, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पढ़ पढ़ की जन, जब उदकारख करा करतारा, प्रजा तहत तब देह पारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम,

अपना जान मुझे अप्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख तेग जग मैं दो चल राखे आप मोहे आरु नाम दलै।

द्वार तो हे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किं कर थारा दास जान दे हाथ बारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बेद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कब लेहो सुधारो कबियो बाज दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे हों जग माहे जो तेह प्रभ को त्याए हैं अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा।

दोहरा। काल पुरख की देह मो कोटक बसन महेशा, कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरा अवसास करोर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत, सुरगबा सुरगबुर करा सगरी पुरी समेत। चाओ पई जो एह कथा सुने अर गावै, दुख पाप तेह निकट न आवै। बिसन भगत की ए फल होई, आद ब्याद श्वै सकै न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचामन, हाड़ वदी प्रथम सोख दामन। तो प्रसाद कार ग्रंथ सुधारा, भूल परी लाहु लेह सुधारा दोहरा। नेत्र तुंग के चरण तार, सद्रव तीर्थ रंग। श्री भगवत पूर्ण कियो, रागबर कथा प्रसंग दोहरा।

तारेयन साकत निंदक दुष्ट खेन माहे बेदारियन तेस साहिब की टेक नानक मन माहे।

कीर्तन कथा दे प्रवाह चला के सिख संगता नू निहाल निहाल कीता जी। आप जी दा कोटान कोट शुकर शुकराना है जी। आप जी के हजूर पावन चरणा कमला पास अमृत शब्द कीर्तन सोदर दी चौंकी रहरा साहब जी के पाठ जी की अरदास अखर वाद घाट भुल चुक दी माफी बख्शो जी। अगे वास्ते सुमत सोजी बख्शो सुध स्पष्ट प्रेम भै भावना अदब साहित गुरबाणी पढ़न सेवा सिमरन कथा कीर्तन करन दे बल उद्दम चाओ बख्शिश करो जी। पढ़ी सुनी बाणी दर ते प्रवान करनी जी। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव पढ़न सुनन वालियां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा संगतां दियां हाजरियां पेटावां आप जी के पावन दरबार गुरु के लंगरां विच तन मन धन करके कीतियां सेवावां दर ते प्रवान करनियां जी। चलिया कदम कदम लेखे विच लाउणा दरों करो समुचियां संगतां परिवारां बच्चियां नूं गुरसिखी दी दात नाम सेवा सिमरन चरणा कमलां दा प्रेम भरोसा बाणी बाणी नाल प्यार कर परिवारां विच सुख शांति चढ़दी कला तंदरुस्ती किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणी अंग संग सहायक होना सतगुरु जी कृपा करो। अपने खालसे पंथ जी नूं सदा ही चढ़दियां कला परस्पर प्रेम प्यार एकता तफाक राज भाग खालिस्तान दी दात बख्शिश करके पंथ काम नूं निहाल करो। जेलां दे विच बंद बंदी सिंघां नूं देह अरोगतावां चढ़दियां कला रहाइयां बख्शिश करनियां। आप जी के हजूर संगतां वल्लों कड़ा प्रशादी पावन देग सजा के हाजर है। देग सजाउंदियां बाणी पढ़दियां होईयां भुल्लां दी माफी बख्शो। अगे वास्ते

0: 사전 조사?
1: 맞아야
0: 돼. 아, 이제는 맞아야 돼.
2: सुशासंगजीओ होना आप संगतानु गुरते आस्था डिवरण राही जथा निहाल करेगा आस कर दें जदों फिर समा प्राप्त होवे जरूर गुरु घर विखे पहुंच के गुरते आस्था डिवरण राही आप संगतानु निहाल करन जो पिछले दिनां तों महाराज दे पावन सरूपां दी होई बेदबी दे संबंध विच गुरद्वारा सिंह सभा सरी विखे गुरु साहब नाल प्यार प्यार रखण वालियां संगतां वल्लों रोजाना कतरता कीती जांदी है। अज भी सतसंग जी जो 6 बजे दे लगभग गुरमुख प्यारियां वल्लों गुरमंत्र दे जाप होने हन, सो सतसंग जी रोजाना सवेरे 8 बजे तों लै के रात दे 8 बजे तक आपो अपने कम्मां नूं छड करके धुप मींह दे विच खड़ के

सोहिला राग गावड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कार कीरत आखी करते का होए विचारो तेत कर गा

नहीं जा सकेगा, कंते थे रह जाएगा। निरंकार दे दे साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है। कारण ये मन आया भी सीधा सीधे रूप दे निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है तन ते मिट्टी, ये मिट्टी थे रह जाएगी। मन जोत है, ये जोत दिच जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है, शरीर दे अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करते ने। वक्ती तौर ते सूक्ष्म शरीर का संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने, कुछ दिनों लई, कुछ घंटिया लई, कुछ समय लई। सनातन जग दे महान जगत गुरु शंकराचार्य एक महीने अपने शरीर चो निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर जिन्हों जोत कहिंदे ने, मन कहिंदे ने, कढ दिता। चेलिया नूं कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं एक महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावां, ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नूं कहा मैं 7 दिन बाद आवांगा, मैं होर मंडलां दे जाना। मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय मसंदा नूं मौका मिल गया, राम राय दी देही नूं अग ला दईए ते आपां खुद गुरु बणे। ए विचकार रोड़ है, इनूं हटाओ। अर्थी सजा लई, अर्थी कढ़न लगे। राम राय दी पत्नी जारो जार रोंदी है, दुष्टो एक हफ्ता तो उड़ीक करो, अज ते 3 दिन हुए ने। मैनू कह गए ने 7 दिन बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ने, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता, मसंदा दी ताकत ले गए शमशान घाट, अग ला दिती, अद्धा शरीर जल गया। राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया। पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहण दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करन दी पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर नो नहीं साड़दी, पानी नहीं डोबदा। उस शरीर देच प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज देच बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनु जिंदा साड़े है, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनु जिंदा जला देता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हों सारे मसंदा नू देहरादून देच जिंदा जलाया गया। इस तरह की अनेक घटनावां ने अपा जितने बैठे ने इतने सत्संग देच सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किहड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही देच किधरे भी होन, कि किसे सत्संग नूं मन भावदा ओह देख लैन दूरों, ते इस शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ लैंदे ने पहुंच जा। प्रथम। दूसरा, जिन्हां दी मौत हो गई, शरीर दी मौत हो गई, इहदी मौत ढेरी हो जांदा है, मिट्टी हो जांदा है। सूक्ष्म शरीर ना जलाया जांदा है, ना ढेरी होंदा है। आम हालात विच शरीर दी मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिनां दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जांदा है।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साड़ी एक जबान साड़ी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नू पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकती। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नू परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंदे हुए मन नू पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती की। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं की। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड़ बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है, कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थो तक के जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है, दोनों का करोड़ा माइल्स का करोड़ा कोह का इन्हों का फासला है। इन्हों करोड़ा मीलों की दूरी होने के बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक एहो जी शक्ति टिका दिती, ऊर्जा टिका दिती, जिहड़ा सूरज नू अपने तो करोड़ा कोह की दूरी होने के बावजूद भी ओदियां किरणां नू देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। वो केड़ी ताकत है, वो केड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नू चिक्कड़ विच खिड़े हुए नू पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना तो चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती, प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई वारी चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिठ ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है, ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की, एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खेड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं वो खिच पानी विचों उन्हूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आंदा है, जितना मोर उन्हूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। वो असमान दे उते वो धरती दे उते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पैलां पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपीआ कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा, ओ भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओदे विच वी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कह लगे चंद्रमा दी चकोर नल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमक दे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले।
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना है परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटा बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटा बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार नेह ये जितने भी शब्द असी वर्तने हैं जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जेड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुर्दे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं ता प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं ओ मुर्दे नु जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन की गल की हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा की एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे की प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं डर ता उदो है जदो वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कह लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ऐ मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना
बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचो पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने बिच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचो भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन, ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिट्टी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिट्टी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी वो महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है, ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दे जदो चलिया पैरां दियां चशिया, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए, ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निब गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते, आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसी ने उथे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच ओदे जिक्र विच ओदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उस वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकियावा। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। ओ महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्धा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपां वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां, उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई। कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं,
अपने आप नूं पूर्ण तौर ते रब दे चरणां विच उन्हां ने फिदा कर दिता, उन्हां ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणां नूं अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया, सच्चे पातशाह ये तां आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर यह दसो प्रीत कैसी करिए, प्यार किहो जिहा करिए। कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहिंदे ने कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझण लिख है अपनी जिंदगी दे टुकान वास्ते, ना के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नूं प्रगट कर ले। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, घो के उहदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा होईयां, लहरां पैदा होईयां, ते जदों पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वज्जी, कमल दी नाली नूं वज्जन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जेड़ा जड़ तो लै के फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी उहनूं लहर धक्का मार के खब्बे, कदी सज्जे, उन्हों सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सज्जे नूं तकदी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नूं प्रीत किवें करी दी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जिहड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं दिंदा हुंदा। ते सच जाणियो जेड़ा बंदा मित्रता करदिया होया भी उलामे गिले शिकवे करदा, वह कदी प्रेमी नहीं हो सकता, वह कदी प्यारा नहीं हो सकता। कहन लगे इस कमल दे फुल नूं पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नूं, ते बाणी विच ये गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है, तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है, तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके हुए प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरां खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नू, तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरा मार दे, छट परा हो जाए पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड़ दिता, उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने, इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना पानी नू छड़न दी देर, कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना है, मेरी खौंद नू खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार, ना एदे तो निर्लेप दा, ना सुगंधी, ना रूप ते ना भवरे, तां की होया जे पानी ठोकरा मारदा। आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने, ए गुण भी तां मैनू पानी ने कृपा करके बख्शे ने ना, जिन्हें गुण दिते ने एदी ठोकर भी सहारांगे। हजूर ने कहा ए मनुख, प्रेमा भगती दा अर्थ है कमल दी थरा तू प्यार कर। किवें? परमात्मा ने तेनू सुंदर देह दिती है, परमात्मा ने तेनू गुणा दी सुगंधी दिती है, परमात्मा ने तेनू सुरत दिती है संसार विचों निर्लेप रहन दी जुगत दिती है, परमात्मा ने तेनू ताकत दिती है करोड़ा जन्मा दी दूरी होने दे बावजूद तू सुरत करके ओदे चरणा नू पकड़ के खेड़ा प्राप्त कर सकना। जिस परमात्मा देव ने कमल दी तरह तेरे ते इनी कृपा कीती होवे, ते जे फिर भी थोड़ा जा झटका लगे दुनियावी, ते यक लखत परमात्मा वालों मुंह मोड़ के पिठ करके चला जाए, सच जानी ए कदी सच्चे प्रेमी नहीं हुंदे। प्रेमी तां होवे जेड़ा ठोकर खा के भी अपने प्यारे दा लड़ कदी ना छड्डे। एवे प्रेमा भगती, बाबे नानक ने ऐसी प्रेमा भगती कीती, ते बाणी विच बचन कर गए, कहन लगे रे मन ऐसी हरशों प्रीत कर,
ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ, ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਠੋਕਰਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੋਟਾ ਆ ਜਾਏ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੜਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਕੈਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਉ ਅਦ ਕਹੋ ਤੋ ਸੁਖ ਘਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਓਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਉ ਅਦ ਕਹੋ ਤੋ ਸੁਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਕਿ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਚਾਤਰਕ ਮੇਹ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਪੀਆ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ना मैं कर सकता, ना मेरे को समर्थ है, ना ही ये शरीर मेरा। पता नहीं रब ने के कीता है, कीता रब ने, दुनिया कही जा रही है धन कबीर धन कबीर धन कबीर। ओ पुरुष है जिसका अपना करतापन मिट गया है ते पूर्ण करता प्रगट हो गया, ये वो कह सकता है। रहीम अपने जमाने का एक बहुत वड्डा दानी सी, लेकिन देन लगया अक्सर इस दियां अखां नीवियां रहिंदियां सन और चलदिया होया भी अक्सर नीवी अख नाल चलदा सी। दो चार सियाणियां ने किधरे कह दिता, ते सियाणे अक्सर हंकारी होंदे ने क्योंकि सियाणप दा हंकार होंदा ही है, भई हद हो गई तू देन वाला है, जब तेरा हाथ उच्चा है तो तेरा सिर उच्चा होना चाहिए, तू सिर नीवा क्यों करदा, अपनी अखियां नीवियां क्यों करदा, नैन नीचे क्यों करना है। तेरा हाथ उच्चा रहिंदा है, तू दानी है, हर एक नु देना है, तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए। तो पता है रहीम की कहिंदा है, साईं सब को देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें या ते नीचे नैन। दाता परिपूर्ण परमात्मा है, अज्ञानी लोग रहीम नू दानी कह देंदे, शर्म दा वारा मेरा सिर झुक जांदा, की कर। लोकी कहंदे ने शर्म दा मारा मैं सोचदा धरती फटे ते समावां, दाता ते तू, मैं ते कृत हां, मैं ते निमित हां, करता ते तू है, सब कुछ दा करता। इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है, मैं थोड़ा जिहा होर स्पष्ट करन दी थोड़े सामने कोशिश करा, क्योंकि मूल मंत्र दा ए अखर करता अपने विच इतना कुछ छुपाई बैठा है। हो सकदा है अगर वो न्याय शास्त्र दा करता जिस ढंग नाल लिख गया है और उसे ढंग नाल सुनाया जाए विचारिया जाए, बहुत सारे लोग गुस्ताखी माफ समझ दे तल तो जो थले जी रहे ने नास्तिक हो जाणगे। न्याय शास्त्र नु पढ़ के बथेरे नास्तिक हो गए। क्योंकि उसने अपने होंद बिल्कुल एक पासे कर ले, कुछ भी नहीं, ईश्वर तो बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पाप भी होई, पुण्य भी होई, बुरा भी होई, भला भी होई, रात भी होई, दिन भी होई, जन्म भी होई, मृत्यु भी होई, इतनी व्याख्या करदा गया, इतनी व्याख्या करदा गया, आखिर मनुखां दी समझ तो परे हो गई गल। जैसे धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते सहस तो नैन नना नैन है तो एक, सहस मूरत नना एक तो ही, तेरी कोई मूर्ति नहीं है। चक्र चैन अर वरन जात अर पात नैन, जे कोई तेरा चक्र चैन नहीं, कोई तेरी मूर्त नहीं। सहस मूरत नना एक तो ही, पर सारिया मूर्तियां तेरिया ने, गुरु नानक देव जी कहते तेरी कोई मूर्ति नहीं, सारिया मूर्तियां तेरिया। सहस तो नैन नना नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिंद, सहस तो गंध इयो चलत मोई। तेरे कोई पैर नहीं पर सारे पैर तेरे ने, तेरी कोई नक नहीं गंध गंध सुगंध माणन वाली नासका, तेरी कोई नक नहीं इस सारिया नासका तेरिया ने और किसतिया, तेरी कोई जबान नहीं सब जबाना तेरिया, तेरा कोई रूप नहीं सारे रूप तेरे ने, तेरी कोई अख नहीं सारिया अखां तेरिया ने, तेरे कोई पैर नहीं सारे पैर तेरे ने, तेरे कोई हथ नहीं सारे ही हथ तेरे ने। ते पहेली हो गई, किस तरह पकड़ोगे गुरु नानक दी इस गल नूं। निर्गुण रूप दे कोई तेरी अख नहीं पर सारिया अखां तेरिया ने, तू करता है और ये कृत है, और तू अपनी कृत दे च बैठा हुआ है, अपनी कृत तो वख नहीं है। करता पुरख, पुरख कहिंदे ने पूरे होया व्यापक, अपनी कृत दे विच तू बैठा है, कृत तो अलग नहीं। जे अखां तेरिया कृत ने तो अख दे च तू ही है, नक तेरी कृत है तो नक दे च तू ही है, हाथ तेरी कृत है

चला, इसका मतलब दृष्टि इसको भी सी पुरानी पढ़ाई कम आ गई, पुरानी सूझबूझ कम आ गई, कईयां दे मन दे उते इतनी मैल जम जाती है, इतनी मैल जम जाती है, मानो मनुख नहीं दिखाई देते, शैतान दिखाई देते, पशु दिखाई देते, इतनी मैल जम गई। और गजब की गल, मैल दे च रहन दी आदत बन गई, कपड़ा दिखाई नहीं देता, तन ते जो पाया है, इतनी मैल, इतनी परत, घर परत मैल दिखाई देती है, और इस मैल नू पहनण दी आदत बन गई, पाप दे च जीण दी आदत बन गई, पाप दे च रहना आदत बन गई, झूठ बोलना आदत बन गई, व्यर्थ बोलना आदत बन गई, फिक्का बोलना आदत बन गई, कौड़ा बोलना आदत बन गई, हर वक्त मन दे च बुरा सोचना किसी दी जान बारे, किसी दी इज्जत बारे, किसी दे माल बारे मन दा सुभाव बन गया। ये पाप जीवन भर रिपीट होते रहते, अनंत कट्ठे हो जाते हैं, इनू किवें धोईए। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे जो है दसदे ने, खुलासा मैं तुहाडे सामने गल करांगा, भरिए मत पापा के संग ओ धोबे नावे के रंग। काश किधरे ये पाप भी पानी नाल धुल दे, तीर्थां दे कोई डुबकी लांदे ते पाप धुल जाने, दुनिया दे कोई तीर्थ पाप नहीं धो सकता, इसी पौड़ी च खुलासा आ जाएगा। आम साधारण पानी ये पाप नहीं धो सकता, तीर्थां दा जल भी नहीं धोवेगा, कुंभ दा इशनान भी नहीं धोवेगा, माघी दा इशनान भी इस पापां दी मैल नूं नहीं धो सकता। ये किवें धुलेगी, ये मैल किस तरह फिर मिटेगी? गुरु नानक ने जिस ढंग नाल खुलासा पेश किया, मैं फिर अर्ज करा, काम क्रोध पंचांग के वसरे, तीर्थ नाए कहें सब उतरे। तीर्थां दे उते इशनान करदिया भी मनुख पाप कर बैठेगा, की पाप धुलणगे होर पाप करेगा। कहिंदे ने बनारस उन नगरी ते शिव जी ने ऐलान किया सी अपने जमाने च, जद ए नगरी वसाई सी, भई बनारस दे संत सारी दुनिया च मशहूर होणगे। भारत दे च बनारस दे ठग मशहूर ने, संत मशहूर ने, ते कबीर नूं भी कहना पिया, गले जिना जप मारिया लोटे हथ ने वग, ए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े ठग बैठे ने, बदू मक्के दे जी ने, बड़े बड़े हिंसक बिरतियां ने, मालक पवित्र तीर्थां ते बैठे, कोई पाप नहीं धुले, बड़े बड़े तीर्थ, जितना तुसी बर्दाश्त कर सकते मैं उतना ही अर्ज कर सकता। बड़े बड़े कुकर्मी बैठे हैं, बड़े बड़े दुष्ट बैठे हैं, तीर्थां दे जल नाल दुष्टपना नहीं जुड़ेगा, पाप नहीं धुले। और गुरु नानक मनते भी नहीं, तो अगों पौड़ी जिक्र भी आ जाएगा, फिर ये मैल किवें धोलेंगे, किस तरह धोएंगे? प्रथम ते इस मैल नूं वेखना ही बड़ा औखा, मिथ्या बोली जांदा है, कदी ख्याल नहीं आया मैं मिथ्या पे बोलता, कौड़ा बोली जा रहा कदी ख्याल नहीं आता मैं कौड़ा बोली जांदा, बुरा सोची जा रहा कदी नहीं ये सोचनी आई कि मैं की सोच रहा, ये विचार की चल रहे। अगर कोई ऐसा देखण लग पवे उन्हों मनीष कहते हैं, ये अपना मन वेखण लग पे, तो जिहड़ा अपना मन वेखण लग पे सारियां दा वेखण लग पैंदा, फिर मानसिक कमजोरियां दा उसनों पता चल जांदा है, दूजियां नूं माफ करन दा भी जज्बा उसके अंदर पैदा हो जांदा है, क्योंकि उन्हों पता चल जांदा मन की है, मन की फितरत की है, निवाण दिश जाना इसकी आदत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जिवें खोलणगे तुच्छ बुद्धि अनुसार ये विचार, दास कल थोड़े सामने खुलासा पूर्वक रखण की निवाणी कोशिश करेगा, साहब रहमत करन, बख्शिश करन, जिवें पानी नाल मुंह मत्था धो लैने, साबण ते पानी नाल कपड़े धो लैने, सानू मन दे धोण की भी जाच है। मैले कपड़े समाज नूं नहीं चंगे लगदे, मैला मन परमात्मा कबूल नहीं करता, नहीं करता।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: सार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन तरकी उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करो
1: साथ संग अग्न सागर तरहो
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंगे अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: संत कमाप्त हो उदार
1: आप त्रैलोक का निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजे
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभ आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रेन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जाल विकास के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
1: नानक नभी खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ए फल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: एहो निधान जपै मन कोए
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन बसराम
0: कोट अपराध साध संग मिटे
1: संत कृपा ते जमते छुटे
0: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
1: जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
1: एक नाम मन माही समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबसे ऊच तांकी शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम।

उतने। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे चना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे चना बदले, उस महाशक्ति का ना ही ते परमात्मा है और की है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होण दी सौगात परमात्मा ने हर मनुख नू दित्ती है, हर एक नू दित्ती है। किस तरह? परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। ये गल वखरी है, सब कुछ नू वेखण दी तौफीक नहीं, पर वेखदा है। परमात्मा सुनदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पै, सबनों वेखदा पै, सबनों सुनदा पै, सदा सुनदा पै। ठाकर हमरा सद बोलनता, सदा बोलदा पै और उदा बोल सारी दुनिया दे गूंज रहा। अनाहद ना मनुख भी सुनदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमत है। मनुख भी जानदा है पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वास्ते जफर कहता है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को। मनुख तो वद परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआ दा भविष्य अजय मनुख होना है, वनस्पति दा भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरां दा भविष्य ते अजय वनस्पति होना है। केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी का महीना पिछलिया, इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम ब्याह करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं कह खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 बजे ये कौन फोन करता। दिल्ली तो एक नौजवान पुछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कह लग्या कि फिर तुसी आ रहे हो ना दिल्ली? की बाई, संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुंचना सी, तुसी आ रहे हो? असी पोस्टर पढ़े ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहा उदो ते गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना, तुसी हुणे ही पुछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस देंगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार दा, सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया परेशानियां नहीं जानगी, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नू उच्चा महल मकान मिल गया बेचैनी नहीं जाएगी, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटणगे जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा।

0: कलेश भी बनया रहेगा कि होया तू बहुत बड़ा शक्तिशाली राजनीतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत बड़ा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाई। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा है तो कबीर कहिंदे होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कर सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नूं दित्ते हुए ने। सीमत ने ये असीम हो सकते ने, उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए। पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया का और मुखी सजणा का। बार बार धन्यवाद। फुल चुक दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

0: साहिब सिफत सवाल जिन किती सो पार पया कहो नानक ते क्या बाता जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musiala, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: जान के पूजे आ गए और ऋषि जान के सरकार आ गए। समाप्ति करा मैं। साडे विच जना खड़ा खड़ा हो जाता है, नहीं जी है गुरु गोबिंद सिंह की रचना नहीं, रचना नहीं, रचना नहीं। मैं अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह की रचना तो चंगे चंगे सियाने प्रेरणा लेंदे पे, कुछ सीखते पे, कुछ सीखने की कोशिश करो उन्हां दी रचना तो। ठीक है, पुराना इतिहास सतगुरां ने लिखा है, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं किया। 26 अवतारां दी कथा है और सतगुरु साफ लिखते पे ने, दसम कथा भागवत की, पाखा करी बनाए अवर वासना नाए प्रभ धरन जुद के चाहे। मैं ये सिर्फ टीका कीता है, मेरे अपने विचार नहीं है गुरु गोबिंद सिंह, मैं भाषा की थी तो गल खत्म हो गई। इल्जाम ते गुरु गोबिंद सिंह ते उंज नहीं आउंदा, पर कीता की जाए, अकल नू ताले ला दो ते गुरु गोबिंद सिंह दी हर दिन नू खंडन करी जाए। दुआदार बोली जाओ जिन्हां नू कख नहीं पता, सारी जिंदगी किसे होर पासे रोलदे ने, बुढ़ेपे जो है कौम नू भ्रष्ट करन वास्ते गलत बोलनियां बोलन शुरू कर देंदे ने ते लिखना शुरू कर देंदे ने, जिहदे नाल आम समाज गलत फहमी च पै जांदा। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, शांति निकेतन दे उस शब्द तो कविता बनाउण दी शैली, नवी शैली कहिंदे जी इस नू जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दिता, असीं सिखदे हां, असीं सिखण दी जो है कोशिश पै करदे हां, असीं जाणन दी जो है कोशिश पै करदे हां। खैर लमकावां ना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने शब्द ओहंकार, जैसे ओहंकार दी धुन होई अनंत सूरज प्रगट होए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े और ओ धुंध पानी बन गई। सहजे सहजे ए अग दा गोला ठंडा होया, इदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया ओ पत्थर दे रूप दे प्रगट होया, आकार रूप दे पहला सी पत्थर। और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जांदा इतना परमात्मा नहीं पूजिया जांदा, पता है क्यों? जैन पत्थर पूजदे ने, बौद्ध पत्थर पूजदे ने, सनातन पत्थर पूजदा, ईसाई पत्थर पूजदे ने, भावे मुसलमान आखन असी पत्थर दे पुजारी नहीं। संगे असवत जो थे पिया खाना खुदा दे जद्दा दे, कहिंदे ने इब्राहिम तो आया, सीधा जन्नत तो आया इब्राहिम नू प्राप्त होया, सीधा खुदा तो आया ए पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पुछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज आउंदी है? सब कुछ खुदा तो आया, पत्थर भी खुदा तो आया। जद ईसाई कहिंदे ने ए हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है, उन्हां नू इंज कहना चाहिए है, हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है, शरीफ बेटा है, नेक बेटा है, कोई हर्ज नहीं इस नू मनण दे। नेक पुत्र है, चंगा पुत्र है, नहीं जी इकलौता पुत्र है, बाकी कितों आए ने? फिर सारे उसे तो आए, सब उसे तो आए। कहण दा ढंग ईसाइयां नू जो है नहीं आया, गुस्ताखी जो है माफ। जितना पत्थर पूजिया जा रहा है, क्यों? आकार रूप दे परमात्मा जब प्रगट होया है संसार दे, पहले पत्थर दे रूप। हुण पत्थर ते परमात्मा दा सुभाव इक्को ही है, परमात्मा नू भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नू भी नहीं लगती, परमात्मा नू दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नू भी नहीं व्यापदा, परमात्मा नू हजारां गालां कटो क्रोधी नहीं आउंदा, ते सारा दिन सजदा करी जाओ उपमा करो करी जाओ कोई फुल नहीं जांदा। जे सब मिलके आखण पाए वड़ा ना होवे घाट ना जाए, सारा दिन पत्थर देखो मथा रगड़ो वो कोई फुल नहीं जांदा, ते सारा दिन उस गालां कटो वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठदा। पत्थर दा स्वभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है, फर्क सिर्फ इतना है पत्थर टोटली सुत्ता होया है, परमात्मा पूरा जाग गया है, पूर्ण तौर ते चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा ये परमात्मा हो जाएगा। सहजे सहजे प्रकृति, प्रकृति दे भी अर्थ किधरे नेचर ना समझ लेना, कुदरत आम कुदरत करदे ने। संस्कृत दा शब्द है प्रकृत, प्रकृति कृत तो पहले परमात्मा, इथे प्रकृति दे अर्थ परमात्मा बनता है, नेचर नहीं बनता, कुदरत नहीं बनता, कुदरत ते कृत है, कादर दी कृत है। पर प्राकृत कृत तो पहले, उते परमात्मा है, उते करता है। पर किरती उसका नियम सहजे सहजे पत्थर नो मिट्टी ही बना जिस शकल दे प्रगट कीता बनस्पति ए दूजा पड़ाव सी पत्थर ही बनस्पति बने बनस्पति नु थोड़ी जिया प्यास लगती है पानी चाहिए क्यों जागी है पत्थर ते टोटली सुत्ता होया सी जागे दियां लोड़ां आउंदियां सुत्ते दियां लोड़ां नहीं आउंदियां बनस्पति दी लोड़ पानी चाहिए प्यास पैदा हो गई है हजारा लखा साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शकल दे प्रगट होई वो है पशु ते पक्षी हुण निरे प्यास नहीं भुख भी लगती है निरे पानी नाल शेर नु नहीं जवाया जा सकदा मांस भी चाहिए निरा पानी नाल गऊ नु नहीं जवाया जा सकदा घास भी चाहिए प्यास भी लगती है भुख भी आवाज भी आ गई पशुआं कोल आवाज भी आ गई लखा साल दी लंबी यात्रा तो बाद मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहे हैं ए पशु जिस शकल दे प्रगट होए ने इनो कहंदे ने मनुख एदा मन पशु नालों ज्यादा विकसित हो गया है बनस्पति नालों ज्यादा जागया है एदियां लोड़ां भी ज्यादा न जागया जो ज्यादा है पशु नालों एदियां लोड़ां ज्यादा ने पशु दी समाजिक जिंदगी नहीं है पशु दी राजनीतिक जिंदगी नहीं है पशु दी धार्मिक जिंदगी नहीं है मनुख दी है ज्यादा जागे ज्यादा जागे एदियां समस्यावां भी ज्यादा ने और इंज कह दईए सारे पशु सुखी ने दुख दे केवल मनुख जी रहे क्योंकि ज्यादा जागे इन असलियत का थोड़ा बहुत ज्यादा पता चल गया पर जिमे बनस्पति ते पत्थर रस्ते दे चने पशु भी रस्ते दे चने मनुख भी अजे रस्ते दे चे मनुख दा परमात्मा होना बाकी है भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया असी सारे ने सारे पड़ाव दे चा जितने चिर तक गोबिंद नहीं हो गए रस्ते च ही है गोबिंद किवें होई गए प्रभु किवें होई गए मैं अपने वक्ताओं नूं इत्थे समाप्त करना क्योंकि मैं 10 मिनट ज्यादा लै गया ते होर समय दी मैं उलंघना नहीं करनी थोड़े नेड़े दूजे गुरुद्वारा साहब दे 118 मैं 2 दिन हाजरी भरनी है 29-30 उदों मैं खोलण दी कोशिश करांगा प्रकृति ने पत्थर नूं बनस्पति बनाया प्रकृति ने बनस्पति नूं पशु पक्षी बनाया प्रकृति ने पशु पक्षी नूं मनुख बनाया हुण प्रकृति मनुख नूं परमात्मा नहीं बनाएगी मनुख स्वयं कोशिश करे अपना हथे अपना आपे ही काज सवारी है मनुख नु स्वतंत्र छोड़ देता है प्रकृति ने मनुख नु स्वतंत्र कर देता है कर्म लई स्वतंत्र तुसी आखो नहीं ए भी बजे होया फिर सत्संग करन दी लोड़ ही नहीं कथा कीर्तन दी लोड़ ही नहीं स्वतंत्र है भुखा मर जाएगा शेर घास नहीं खाएगा भुखी मर जाएगी गऊ मांस नहीं खाएगी ओदा ते खाना पीना भी बजे होया मनुख दा खाना पीना बजे होया ने हजारा तरह के पकवाना दा जन्म दाता है सिर्फ भारत विच हजारा तरह के खाने ने बंगालियां दा खाना होर गुजरातियां दा होर तमिलनाडु महाराष्ट्र लोगां दा खाना होर पंजाबियां दा होर कश्मीरियां दा होर चाइनीज फूड अलग है यूरोपियन अलग है दुनिया विच हजारा तरह के खाने क्यों मनुख स्वतंत्र है
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington
2: रेडियो स्टेशन 1550 AM गुरबाणी सैगमेंट तुहाडे तक स्वर्गवासी सरदार अजीत सिंह दी बाद स्वर्गवासी माता सुरिंदर कौर बाद दी याद दे विच 1550 AM तों गुरबाणी प्रचार कीता जांदा है 1550 रेडियो दे उत्ते गुरबाणी दे किसे भी प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन वास्ते 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ 2990152 ਸਟਰੀਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 24 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 16.98 ਦਾ ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 16.98 ਦਾ ਅਤੇ BC ਰੈੱਡ ਔਰੇਂਜ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਵੋ 88 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: 107.7 Pulse FM is a proud supporter of the Starfish Pack program in Surrey. Every Thursday, volunteers from the Lower Mainland get together to help pack 2 ready-made breakfasts, lunches, dinners, and snacks into a backpack to be delivered to hungry children on Fridays. These kids are then able to enjoy the nutritious and delicious food with their families over the weekend and be healthy and ready for school on Monday. The Surrey Starfish program is currently seeking donations and volunteers to help families in need. If you're interested in helping out, head to starfishpack.com. An initiative of Pulse FM Cares.

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दी झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।